0: स्मित नमस्ते।
1: नमस्ते सर।
0: कैसे हो? अभी तबीयत कैसी है?
1: सब ठीक है सर, सब ठीक।
0: देखिए, पूरा देश आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। महामृत्युंजय का जाप सब दूर चल रहे हैं। आपकी हिम्मत ने, आपके धैर्य ने और आपकी सूझबूझ ने, यानी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने और इतने लोगों की जान बचाई। और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं हैं, जान बचाने वाले लोग हैं। और आपने अपने शरीर पे इतना बड़ा घाव हुआ, आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया। और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूं।

0: what their religion taught them to do. The Hindu rushed to save the lives of the passengers on board, most of whom were Israeli Jews, right? Even while he was on the floor in the cockpit, bleeding, almost dying, according to eyewitnesses who had to rush the cockpit. And then, of course, you have this Omani Muslim jihadi pilot, co-pilot, whatever they want to call him. But once again, it's a big juxtaposition between, you know, the violent ideology of Islam and the peaceful ideology of Hinduism. And it just shows the pro-life mentality of Israelis and Hindu Indians.
1: You know, President Trump called him a hero. You know,
0: yes, he did.
1: Brave hero. We talked about, and you talked about, that he'd be given some kind of an award by the Israeli prime minister. Would you ask President Trump to do the same for him?
0: I think that President Trump should do the same. Yeah, absolutely. It'd be really great at the G20 summit in Miami, which is coming up soon, if these heroes who were involved in restraining this jihadi pilot could all be invited to the G20 summit, including the Israeli plumber and the Israeli dentist and the Indian pilot.
2: स्मिथ ने पूरे दुनिया को, पूरे देश का नाम रोशन किया पूरी दुनिया के सामने. सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपके आपके और आपके परिवार की स्मिथ से बात हुई है इस घटना के बाद जो दो दिन निकल गए.
3: मैं तो अभी बॉम्बे में हूँ, लेकिन स्मिथ के पिताजी मेरे छोटे भाई वो दुबई में गए, उनसे मिले हैं और हमारे प्रधानमंत्री ने वो व्यवस्था कर दी थी और वो हॉस्पिटल में जाके मिले. वो भी स्वस्थ है स्मिथ, और इसकी हमें खुशी है बहुत.
2: तो ये जी बिल्कुल, ये जानकर बहुत खुशी हो रही है सब पूरे सारे इंडिया टुडे के दर्शकों को, देशवासियों को, क्योंकि आप कैप्टन स्मिथ इस समय स्वस्थ है. आज हमने, पूरे देश ने देखा है जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बात किया स्मिथ के साथ, उनको भरोसा दिलाया कि पूरा देश उनके साथ है, उनकी बहादुरी की तारीफ भी की. आपको कैसा लगा ये इंटरेक्शन प्रधानमंत्री और स्मिथ के बारे में, के बीच में देखकर आपने कैसा महसूस किया?
3: अपने घर के बुजुर्ग कितने प्यार से जैसे बात करते हैं, ऐसा फील हो रहा था कि कोई अपने अपना ही है कोई, जो अपने पिताजी के माफी जैसे बात करते हैं ना अपने बच्चों से. अब ऐसा फील हुआ, ऐसे सूदिंग, इतने अच्छे से बात किए उन्होंने और बड़ा गर्व बहुत फक्र महसूस हो रहा है अपने प्रधानमंत्री जी के लिए. उन्होंने जिस तरह से बात की वो एकदम से हमको सराहना दी है, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा.
2: ईश्वर जी ये बताइए, आप स्मिथ के बड़े पापा है, आपने उन्हें शायद बचपन से देखा होगा, आप आपकी क्या यादें हैं स्मिथ के, जैसे आप वो कैसे थे जब वो युवक थे, जैसे जब उन्होंने पायलट ट्रेनिंग की थी, क्या आपको पहले से पता था कि उनमें एक ऐसी बहादुरी है, एक देश प्रेम है जो आज पूरी दुनिया ने देख लिया है?
3: एक तो आपको बताऊं कि मैं और मेरा भाई हम लोग 50 साल साथ ज्वाइंट रहे हैं. पिछले 10 साल से जब इसे बच्चे बड़े हुए तो भाई ने भी अलग से फ्लैट लिया और मैंने भी अलग से फ्लैट लिया, बाकी हम दोनों मेरा बच्चा, मेरा बेटा और भाई का बेटा स्मिथ, मेरा बेटा भी पायलट है और स्मिथ भी, हमारा भाई का बेटा भी पायलट है और बहुत ही सरल और अच्छा उसका बचपन में भी वो, ही वॉज वेरी सीरियस अबाउट स्टडीज एंड एवरीथिंग, एक नॉर्मल जो साधारण से बच्चे जो रहते हैं उस हिसाब से था, कोई ऐसी बात नहीं थी कोई.
4: In fact, Prime Minister Modi also spoke with Captain Smith Machar yesterday, who is being hailed as a hero worldwide. Listen in.
5: Smith, namaste.
6: Namaste, sir.
5: कैसे हो अभी, तबीयत कैसी है?
6: सर सब ठीक है, सर सब ठीक है.
5: देखिए पूरा देश आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, महामृत्युंजय का जाप सब दूर चल रहे हैं. आपकी हिम्मत ने, आपके धैर्य ने और आपकी सूझबूझ ने, यानी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने और इतने लोगों की जान बचाई और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं है, जान बचाने वाले लोग हैं. और आपने अपने शरीर पे इतना बड़ा घाव हुआ, आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय भी

0: भाई मैं जापान में हूँ और बाथरूमों को इतनी इज्जत दे रखी है इन लोगों ने कि मैं इमोशनली हो जाती हूँ एवरी टाइम आई एंटर एनी वॉशरूम. छोटे से छोटा बाथरूम हो, बड़े से बड़ा बाथरूम हो, प्लीज जस्ट सी.
1: An Indian content creator traveling through Japan was impressed by the thoughtful features in the country's public bathrooms.
2: उसके बाद जितनी भी मम्मियां हैं जो अपने बच्चों के साथ आई हैं बाथरूम करने, उनके लिए एक सीट है कि बच्चा आराम से उस सीट पे बैठे और मम्मी आराम से लैट्रिना लैट्रिना खेले, जो मुझे लगता है कि थोड़ी सी बुरी बात भी है क्योंकि लैट्रिन टाइम इज मी टाइम, बट सो थॉटफुल. अगली चीज देख के आपका दिमाग खराब हो जाए.
1: अंकिता साहिगल हाईलाइटेड फैसिलिटीज डिजाइन टू मेक वॉशरूम्स मोर प्रैक्टिकल एंड कम्फर्टेबल फॉर वुमेन, मदर्स एंड चिल्ड्रन बियॉन्ड देयर क्लीनलीनेस.
2: कपड़े चेंज कर सकते हो, मानो नीचे पानी गिरा हुआ है या नीचे गंदा है तो आप इस पे खड़े हो जाओ.
1: A US based woman has shared an emotional glimpse into motherhood at 40, documenting her life with her 4-month-old baby. Among their everyday routines and quiet moments, she also shared one unexpected part of their morning, reciting the Hanuman Chalisa. Aishwarya Rai Bachchan turned heads in an all-black look at Paris Fashion Week. At L'Oréal Paris Express Your World show, she also shared a warm moment on stage with Celine Dion against the backdrop of the illuminated Eiffel Tower. Victoria Beckham gave fans a hilarious behind-the-scenes glimpse ahead of her Paris Fashion Week show, casually walking on a treadmill in 4-inch heels. The designer was joined by husband David Beckham, making the workout moment even more entertaining.
3: So are you ready?
1: Paris Fashion Week's experimental spirit was on full display as Maytaya Fekil unveiled its Spring-Summer 2027 collection at Place Dalle Republic. The show's unconventional styling and theatrical beauty looks quickly caught the internet's attention. South Korea's Busan Sky Capsule has become a popular attraction among travelers drawn to its colorful private capsules and stunning coastal views. The elevated railway offers small groups a scenic ride above the coastline, making it a favorite among traveler creators.

0: Additional security measures are required. As part for wider upgrade, full body scanners are set to be introduced at 8 Indian airports in the first phase.
1: हमारे अंदर बीकैस डीजीसीए और मोका हम ही मिलकर ही इसके ऊपर थोड़ा और चर्चा करेंगे इंटरनली भी चर्चा करके इसको सिचुएशन क्या हुआ कैसे हुआ इसके ऊपर अभी हमारे ऑपरेशंस कैसे चल रहे हैं इसके ऊपर और क्या करना पड़ेगा जरूर एक बार हम रिव्यू करेंगे.
0: What began as a terrifying cockpit attack is now raising much bigger questions over the possible Iran connection. The wider regional tensions and the risk of adding yet another flashpoint to an already volatile West Asia. The big question that remains, was this an isolated act or a part of a much bigger plot? Bureau Report, India Today.
2: So from a terrifying mid-air attack to showing extraordinary courage, that is the story of Captain Smith Machar, who stopped his co-pilot from crashing Fly Dubai FZ-1073 and helped save more than 170 lives. And more voices are now calling for the Fly Dubai pilot to be honored. In an exclusive conversation with India Today, Trump aide Laura Loomer has called on her president to honor Captain Smith Machar at the upcoming G20 summit, even suggesting a joint ceremony with Donald Trump, Prime Minister Modi and Benjamin Netanyahu. And Shiv Sena MP Milind Deora has shot a letter to the Prime Minister requesting him to consider Captain Smith for the prestigious Ashok Chakra. The UAE has also hailed the Indian captain for his heroic efforts. Presidential adviser Anwar Gargash has said Smith deserves every bit of appreciation, calling him a man who embodies the meaning of courage and a true hero. And Prime Minister Modi also spoke with Captain Smith Machar, who is now being hailed as a hero worldwide. Listening to this conversation, I leave you with this conversation. Thanks for watching.
3: Smith, agar mere samne aap bhavuk nahi hoge to kahan honge?
4: Chaliye, maine kabhi nahi socha tha ki meri aapse baat hogi. Kabhi nahi socha.
3: आपने इतना बड़ा काम किया है भाई कि हर देशवासी आज दुनिया के लोग भी आपको देखने आपसे बात करने के लिए बहुत ही आतुर है. और ये बात आपने जो बताई है हनुमान चालीसा की, इसके लिए तो मैं गीता बहन को प्रणाम करूंगा कि आपको ऐसे संस्कार दिए. भूपेंद्र भाई को प्रणाम करूंगा कोना. और मैं आपको बताऊं, उसमें कम मेरी जब सोलन बहन से बात हुई तो मैं सरप्राइज था. इतनी स्वस्थता से वो बात कर रही थी, इतनी हिम्मत से बात कर रही थी. सचमुच मैंने कल्पना नहीं की थी कि सोनल बहन ऐसी परिस्थिति में इतनी स्वस्थता से बात कर सकती है. तो मैं समझता हूं कि आपने एक परिवार के नाते आपने सचमुच में पूरे देश का नाम रोशन किया है.
4: सर, मैं रोज सुबह जब पूजा करता हूँ, मेरा 2 साल का बेटा मेरे गोद में बैठ के मेरे साथ हनुमान चालीसा मैं उसको सुनाता हूँ कि जो मुझे बोला गया है. क्योंकि आज हम लोग देश से दूर है, बट हमारी संस्कृति से दूर नहीं होनी चाहिए.
3: सही बात.
4: और अभी तो यहाँ पे तो वो भी नहीं लगता कि हम देश से दूर है. ये यहाँ पे लोग बहुत बहुत बहुत प्यार से और बहुत ध्यान से हमें रखते हैं.
3: आपको पता नहीं होगा, लोग सावरकुंडला में भी, वडवान में भी, सब जो एक ऐसे भावुक वातावरण बना दिया है, और पूरे हिंदुस्तान में तो है ही है. कल सभी मंदिरों में पूजा प्रार्थना आरती हुई, सभी तीर्थ क्षेत्रों में आरती हुई, और सब आपके दीर्घायु के लिए और उत्तम स्वास्थ्य के लिए सब प्रार्थना कर रहे हैं. इसलिए आप तो जल्दी स्वस्थ होने ही वाले हैं. भारत आपका स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक है. अब शरीर में कोई तकलीफ जो भी मैं समझ सकता हूं, आप वीर पुरुष हैं तो आपने घावों को तो झेलना शायद आपके लिए बहुत आसान कर लिया है आपने.
4: नहीं सर, मैं उस घाव को घाव की तरह नहीं सोच रहा हूँ, बिकॉज वो मेरे को और भी फिर उतना मुश्किल होगा मेरा रिकवरी. मैं उसको एक जर्नी की तरह सोच रहा हूँ जो स्लोली स्लोली होने वाला है. वो टाइम लेके होगा, बट मैं बहुत बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि ये रिकवरी होगा. हम एकदम स्वस्थ हो जाऊंगा।
3: मैं सऊदी सरकार का भी और यूएई सरकार का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आपकी बहुत केयर की, मैं उनका भी आभारी हूं। स्मित, आपको जब भी जरूरत लगे मैं एक फोन कॉल अवे हूं, लेकिन आपने सचमुच में, वरना ये कल मैं देख रहा था लोगों ने सोशल मीडिया में जो अपनी भावनाएं व्यक्त की और लोगों ने कहा अगर ऐसा न होता तो पता नहीं हिंदुस्तान पर क्या क्या बीतती, भारत के सभी पायलटों पर क्या बीतती, भारत के सभी पायलटों को किस प्रकार से देखा जाता। आपने इन सबको बचा लिया है, यानी बहुत बड़ा काम आपने किया है। जब मिलूंगा तब अंदर की बातें तो बाद में सुनूंगा मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मोबाइल पर ऐसी बातें करूं मैं आपसे, और आप भी पूरी तरह स्वस्थ हो जाइए।
5: यू आर वॉचिंग इंडिया टुडे।

0: From viral celebrity moments to new announcements, the world of entertainment has plenty making headlines. Here's a look at the stories grabbing attention.
1: ड्राइवर ने बहुत कोशिश की साहब, अरे चलना तो छोड़िए साहब, गाड़ी हिली तक नहीं, एक बाबा को उतार दिया है।
2: Throw them out right now.

0: खिचड़ी कचौड़ी खा ली, समोसे खा लिए, कोई पाप थोड़ी है, एंजॉय करो। तो बीच बीच में आकर से मैं पीता नहीं हूँ, पिलाई गई मुझे दिल्ली वालों शराबी ना समझो।
1: हम इंडियंस बहुत दिल वाले हैं, बट हमारे हार्ट्स इतने वीक क्यों हैं? व्हाई डू इंडियंस गेट हार्ट अटैक 10 years earlier than the West?
0: There is genetics in it, वो तो है ही, और साथ में हमारे वो risk factors भी सबसे ज्यादा है वर्ल्ड में। सो एक एक हिंदुस्तानी एक लोडेड गन है, जिसको हम कहेंगे कि अगर ट्रिगर दबा तो हार्ट अटैक हुआ। अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में हर एक के कोलेस्ट्रॉल विच इज लिपिड प्रोफाइल तो 10 साल की उम्र में हो जाने चाहिए।
1: 10 years?
0: हाँ।
1: A lot of times television headlines become out the fact कि ये देखिए ये एक्सरसाइज करते थे, प्रोटीन पाउडर लेते हैं, इसलिए इनको हार्ट अटैक आ गया है। कितनी एक्सरसाइज इज ओके एंड वेयर डू यू नीड टू स्टॉप?
0: अगर हम सडनली सिवियर एक्सरसाइज, हैवी वेट लिफ्टिंग या एक्सट्रीम स्पोर्ट्स करते हैं, तो हमें पता नहीं होता कि हमारे आर्टरीज है कैसी। माइनर ब्लॉकेजेस जो हमें सिम्टम्स नहीं दे रही हैं, सडनली विद सिवियर एक्सरसाइज हार्ट अटैक कर सकती हैं। यू मे रिमेम्बर वन ऑफ द सेलिब्रिटीज हु एक्सरसाइज फॉर 2 hours एंड सडनली कोलैप्स एंड डाइड, एंड एवरीबॉडी सेड वो तो इतना यू नो एक्सरसाइज करता था, वो तो 2 साल से क्या उसकी मसल से क्या था, एंड नोबडी न्यू दैट ही एक्चुअली स्मोक्ड 15 सिगरेट्स अ डे। वो जो हम देख रहे हैं ना कहीं डांस करते हुए कोलैप्स कर गए, they could have actually been smokers because smoking itself precipitates clotting in the even normal arteries.
1: Yeah.
0: 25-25 साल के लड़के heavy smoking के बाद मैंने देखे heart attack होते हुए जिनकी arteries full of clot होती है, blockage तो होती भी नहीं है, क्योंकि heart attack का reason ही क्या है? हमारी arteries में blockages थी। सोचिए कि pipe है हमारे घर की, वो पहले से ही narrow हो रही थी, कचरा फंसा और पानी बंद हुआ, suddenly artery बंद हो गई।
1: How do I know that if I have uncontrolled BP?
0: You ask a very right question. किसी लोगों को पता भी नहीं है, घर में चेक कैसे करते हैं?
1: And I did not know that TMTs are 40% false positives.
0: Absolutely. Wow. So women में तो up to 50% false positive आ सकते हैं।
1: How do I know this is a heart related issue or this is a gut related issue?
0: Very important. And in fact, both the symptoms can mimic each other. We are missing out 15% of heart attacks and people are damaging their heart thinking कि वो gas थी और शायद वो राजबा खा लिए थे रात को, या मैं बाहर खाने चले गए थे और पूरी रात वो गैस को समझते रहे, डाइजिन खाते रहे। बाय द टाइम दे लैंड अप इन द हॉस्पिटल द हार्ट इज बैडली डैमेज्ड बिकॉज़ 8 to 10 hours हैव पास्ड बाय।
1: द बिगेस्ट मिस्टेक दैट इंडियंस मेक व्हेन इट कम्स टू देयर हार्ट?
0: घबराहट हुई, स्वेटिंग हुई और सोचा कि हार्ट अटैक है और सॉर्बिट्रेट दे दी। सॉर्बिट्रेट इज एक्चुअली द वर्स्ट ड्रग फॉर हार्ट अटैक। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग जो आप खुद ले सकते हैं वो है
1: Welcome to Doctor versus Internet. I'm Sonal Mehrotra Kapoor. Today I have with me a doctor who I've waited a long, long time to bring him on the podcast. If I say heart health, there is one doctor who's a household name in the country. Dr. Ashok Seth is not a doctor. He's an institution. What he's done for heart health, how he propagates about it, and what he's really turning the entire health industry into is commendable. And today when he sits down with us, I wanted to do something which is different from what he's already spoken. Itne sawal hote hain hamare aur aapke dimag mein, but one thing that has often like sort of got into my head is, why do Indians get heart attack 10 years earlier than the West? Are we genetically more inclined towards a weaker heart? Are women's heart different than the way a man's heart responds? And there's no romance in that. I'm purely talking about biology here. What about these high intensity programs like HIROX, like HIIT? What are they doing to our heart? Why is it that we still haven't figured out that young people are dropping dead in their gyms? Or perhaps not very old people dying in their sleep? These are all very fundamental questions, but perhaps a time we bring you all the answers in one podcast. Aisa kya hai jo hum samajh nahi pa rahe ki fit rehne mein aur disease free rehne mein kitna farak hai, and how do we actually get there? So with that, Dr. Seth, how are you doing?
0: Very well, Sonal. In fact, main coffee isliye pee raha hu that I've got to keep up with your exuberance. And let me just say ki you know, your wonderful podcast, very informative. मैं कई दिनों से वेट कर रहा हूँ कि कब सोनल इनवाइट करेगी अपने पॉडकास्ट के लिए. So it's actually the other way around.
1: That is really, really sweet. Thank you so much. But let me dive in straight with the question.
0: Right.
1: हम इंडियंस बहुत दिलवाले हैं, बट हमारे हार्ट्स इतने वीक क्यों हैं? Are we genetically weaker? Our hearts are genetically weaker than the West.
0: That is absolutely correct. There are two aspects to it. Yes, there is genetics in it. वो तो है ही. और साथ में हमारे वो risk factors भी सबसे ज्यादा है वर्ल्ड में. So let's just consider genetics. क्या है? दो तीन चीज़ें जेनेटिक्स में आती. एक तो हमारी बॉडी हैबिटस. आपने सुना होगा कि मैं आपको टॉफी के बारे में बताता हूँ. टॉफी तो बड़ी मिलती है. टॉफी इज बैड फॉर हार्ट. बट जो हम टॉफी की बात करते हैं हार्ट डिजीज में, दैट इज रिलेटेड टू थिन आउटसाइड एंड फैट इनसाइड. तो हम लोग जो हैं हिंदुस्तान में, साउथ ईस्ट एशिया में, वी आर एक्चुअली, हमारे ऊपर से पतले लगते हैं. हमारे पैर पतले होते हैं, मसल्स कम होती हैं, सब कुछ लगता है, बट अंदर से मोटापा ज्यादा है. जो एडिपोज टिश्यू जो हम कहते हैं, जैसे कि हमारा पेट ज्यादा निकला होता है, लिवर के अराउंड, हार्ट के अराउंड, इंटेस्टाइन्स के अराउंड फैट ज्यादा होता है. और ये जो विसरल फैट है, जो जेनेटिकल है, हमारा जेनेटिक्स के हिसाब से वो सबसे ज्यादा नुकसान करता है. तो हम चाहे पतले भी लगते हों और बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से हम चाहे 25 और 23 के बीच में हों, बट फिर भी हमारी नुकसान हो रहा है हार्ट का. और ये एक जेनेटिक्स है हमारा. इसीलिए वही चीज़ हमारे लिए रेज ट्राइग्लिसराइड्स को रेज करती है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को लो करती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस करती है, वही नुकसान हमारे को हार्ट को करती है, एथरोस्क्लेरोसिस. इनफैक्ट ये एडिपोज टिश्यू देखा गया है कि जो पेट का मोटापा होता है, इंटेस्टाइन्स के अराउंड एडिपोज टिश्यू होता है, लिवर को हार्म करता है, हार्ट को हार्म करता है, और ये कोई इन्फ्लेमेटरी पदार्थ प्रोड्यूस करता है जो हमारी आर्टरीज को डैमेज करते रहते हैं और एथेरोस्क्लेरोसिस प्रोड्यूस करते हैं.
1: सो दिस विसेरल फैट लोगों को समझ में नहीं आता. सो आई वांट टू स्पेंड सम टाइम ऑन इट.
0: सो आइडिया ये ले लें कि एक हमारा मोटापा है जो हमें चारों तरफ दिखता है. ओवरऑल हम पूरे मोटे हैं. और एक है कि ऊपर से तो पतले लग रहे हैं, बट अंदर हमारे इंटेस्टाइन्स के अराउंड जो दिख नहीं रहा है, वहां पे फैट डिपॉजिट हुआ है. लिवर जो हमें दिख नहीं रहा, उसके अराउंड फैट डिपॉजिट हुआ है. हार्ट जो दिख नहीं रहा, उसके अराउंड फैट डिपॉजिट हुआ.
1: और आपने कुछ करा नहीं है इसको करने के लिए, जेनेटिकली और मोर
0: इंक्लाइंड.
1: ओके,
0: सो दैट्स द फर्स्ट थिंग. इसीलिए हिंदुस्तान में पेट का मोटापा ज्यादा दिखता है. तो हम क्या कहते हैं कि मोटापा क्या है हिंदुस्तान में? जो वेस्ट के फिगर्स है कि बीएमआई होना चाहिए 30 से ऊपर, तो इंडिया में तो फिट करता ही नहीं है. और बीएमआई छोड़ दीजिए, सिंपल फैक्ट अगर मैं कहें कि हिंदुस्तान में मोटापा क्या है, तो आप अपनी वेस्ट सर्कमफ्रेंस मेजर कर लो, क्योंकि वो आपका मोटापा है.
1: करेक्ट,
0: दैट इज द विसरल फैट. कि आदमी में, एडल्ट में, अगर और मैं कहूंगा सिर्फ
1: वेस्ट रेशियो
0: 90 सेंटीमीटर से अगर ज्यादा हो एडल्ट में, विमेन में 80 सेंटीमीटर से ज्यादा हो, तो सोचिए कि वो विसरल फैट मेजर कर रहा है आपका. और हमें कोई बीएमआईज वगैरह मेजर करने की जरूरत नहीं है. बीएमआई
1: इज नॉट द गोल्ड स्टैंडर्ड एनीमोर, दैट्स बीन एस्टैब्लिश्ड. बट व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज दैट यू आर सेइंग मोटापे का लिंक डायरेक्टली टू योर हार्ट. That is so important.
0: और पेट का मोटापा जो अंदर का मोटापा,
1: अंदर का मोटापा.
0: दूसरी जो जेनेटिक्स की बात है, जो अब ज्यादा रियलाइज हो रही है, आपने सुना होगा LPA. LPA एक लाइपोप्रोटीन है, एक ब्लड में मेजर होता है, और आजकल उसके बारे में कई काफी बातें हो रही हैं. अब LPA देखा गया है कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर. पहले सोचते थे कि अगर फैमिली में चल रहा है तो शायद एक मार्कर है जिससे पता चल जाता है कि शायद हार्ट डिजीज ज्यादा होगी. अब ये एक मार्कर, ये अब ये रिस्क फैक्टर है. और हमारे हिंदुस्तान में या साउथ ईस्ट एशिया में ये वेस्ट से ज्यादा पाया जाता है. तो दिस इज अगेन जेनेटिक्स. हमारे लोगों में LPA बहुत हाई है. अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में ये पॉपुलेशन बेस्ड स्टडीज नहीं हुई है, बट एटलीस्ट ग्रुप्स में देखा गया है और दूसरे कंट्रीज की पॉपुलेशन बेस्ड स्टडीज में देखा गया कि हिंदुस्तान में LPA ज्यादा होता है. और ये LPA सिर्फ अगर वेस्ट में LPA हाई हो, तो अगर हम कहेंगे कि डेढ़ गुना रिस्क फैक्टर ज्यादा बढ़ गया, बट हिंदुस्तानी में यह भी देखा गया कि LPA सेम लेवल का LPA हाई हो, तो हिंदुस्तानी में 3 गुना ज्यादा हार्ट डिजीज हो जाती है. सो वी आर सफरिंग फ्रॉम 2 साइड्स ऑफ जेनेटिक्स. और फिर वो जो बात आई कि और क्या चीजें हैं हिंदुस्तानियों में, तो वो तो क्लियर है, World capital of diabetes, world capital of hypertension, 30% adults above the age of 30 high blood pressure से सफर कर रहे हैं. और मैंने कह ही दिया कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो हमारे बड़े में especially low HDL cholesterol और raised triglycerides. तो एक्चुअली यही है हमारा जीन्स और यही है हमारी किस्मत. सो एक एक हिंदुस्तानी एक लोडेड गन है जिसको हम कहेंगे कि अगर ट्रिगर दबा तो हार्ट अटैक हुआ अनफॉर्चुनेटली.
1: That's a lot to process.
0: I didn't mean to frighten anybody, but
1: I'm very glad you brought it up because it's a good start. Because we, if we don't even identify that as a problem, देखिए problem क्या है doctor said कि India में लोगों ने ऐसे ले लिया है कि अब उम्र होगी है BP तो होगा, उम्र होगी है वजन तो बढ़ेगा, diabetes तो हो ही जाएगा, दवाई खाते रहेंगे ठीक रहेंगे. That mindset, I don't know if you are seeing in your clinic, I'm seeing in people around me, that mindset is shifting. Younger people are now saying that, listen, I don't want to live with blood pressure. I want to ensure I can delay it as long as possible because genetically I know I'm going to get it.
0: Correct.
1: Diabetes runs in the family, blood pressure runs in the family. I'm going to get it one day. But how do I ensure that I delay it as long as possible?
0: And I think it's a good mind shift.
1: Yeah.
0: And it's happened in two ways. Ek to more education's happening through,
1: yes.
0: through exactly what you're doing today is happening. And the other factor is, of course, those visuals of people suddenly dying, collapsing, etc., which is coming up more because of social media, etc., which used to happen earlier. But more, uski wajah se, log kehte, in fact, patients come to me now, young ones, between 30 and 40, kehte ki kyun hai, ye test karaya hai. क्योंकि मेरे किसी दोस्त को ये हो गया है, क्योंकि मैंने वो विजुअल देखा जिसपे ऐसे हो गया था, मैं भी एक्सरसाइज करता हूँ, मैं भी करता हूँ, मैंने सोचा अपने टेस्ट करा लूँ. नाउ दैट इज वेरी डिफरेंट टू व्हाट वी हैव सीन 10 इयर्स अगो.
1: या या एंड आई जस्ट वांट टू से दैट अ लॉट ऑफ टाइम्स टेलीविजन हेडलाइंस बिकम आउट द फैक्ट कि ये देखिए ये एक्सरसाइज करते थे, प्रोटीन पाउडर लेते हैं, इसलिए इनको हार्ट अटैक आ गया है. ये क्या आप मिथ बस्ट कर सकते हैं?
0: एब्सोल्युटली.
1: एक्सरसाइज का और हार्ट हेल्थ का क्या रिलेशनशिप है? कितनी एक्सरसाइज is okay and where do you need to stop?
0: So, isme do bhi cheeze hain. Ye to you asked the right question, ki what is good exercise and what is good heart health. But also, kya us aadmi ko video kheech raha hona chahiye tha? Should not he be resuscitating that person jo samne collapse ho gaya? The two important questions come to my mind. And I'm even more frustrated by the fact that that person jiska video khicha ja raha tha could have actually been saved by the person jo video khich raha tha. Wahi
1: intervention
0: ek do minute
1: I know mein could have saved their life.
0: But anyway, let's come back to this. Heart health and bodybuilding physiques are two different things altogether. Ek to muscle building hai and that is of course increasing with increased gyms. Aap dekh hi rahe ho, looking fit, etc. That's looking fit. But it doesn't mean your heart is actually fit. Jo andar ho raha hai, uska pata karna bahut zaruri hai. It is not, you know, taking all those, you know, steroids, etc. for building your body is one aspect of that. But the other aspect is ki ye bhi de hai, which is well-known fact, ki agar hum severe exercise karte hain, agar hum suddenly severe exercise, heavy weight lifting, ya extreme sports karte hain, suddenly, तो हमें पता नहीं होता कि हमारे आर्टरीज है कैसी है, हमारे अंदर ब्लॉकेजेस हैं कि नहीं है. एंड इवन एनी माइनर ब्लॉकेजेस जो हमें सिम्टम्स नहीं दे रही हैं, सडनली विद सीवियर एक्सरसाइज हार्ट अटैक कर सकती हैं. अगर हम स्मोकर हैं तो सीवियर एक्सरसाइज हमें हार्ट अटैक कर सकती है, क्योंकि सीवियर एक्सरसाइज से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट रेट बढ़ता है, आर्टरीज पे स्ट्रेन पड़ता है, और वही ब्लॉकेज जिसने हार्ट अटैक करना ही नहीं था वो सडनली हार्ट अटैक करती है. सो हमें डिफ्रेंशिएट करना चाहिए कि अगर हम सीवियर एक्सरसाइज पे जा रहे हैं, वेट लिफ्टिंग पे जा रहे हैं, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स पे जा रहे हैं, या हम सोच रहे हैं कि एडल्ट में हमने जिम हमें हाफ मैराथन रन करनी है, तो हार्ट का चेकअप बहुत ज़रूरी है प्रायर. एंड देन वी स्टार्ट ग्रेजुअली और धीरे धीरे हम बिल्डअप करें. नॉट कि किसी दिन कहा यार उसकी तो शेप बॉडी की बड़ी अच्छी, अब मैं चलता हूँ जिम और मैंने उठाना है 50 किलो और साइड में देखा कि उसने 70 किलो उठाया है. तो कहते चलो एक बार 70 भी उठा के देखा जाए. दैट इज अ डिजास्टर.
1: डोंट ट्राई टू बी माचो अबाउट इट.
0: इट इज अ डिजास्टर इन मेकिंग. यस, देयर आर फ्यू अदर कंडीशंस जो हार्ट की होती हैं, जेनेटिकली रन करती हैं, फैमिली में रन करती हैं, और वो पता चल जाता है कि फैमिली में किसी को सडन डेथ हुई है कि नहीं. ये एरिथमियाज होते हैं, हार्ट की मसल की कंडीशंस होती हैं, वो कई बार सीवियर एक्सरसाइज में प्रेसिपिटेट हो जाती हैं. इसलिए 30 साल के बाद तो कहूंगा ये कोलैप्सिस जरूर हार्ट अटैक की वजह से है. लेस देन 30 इयर्स इट कुड बी एनी ऑफ दोस जेनेटिक डिसऑर्डर्स एज वेल एज रेयर एपिसोड्स ऑफ हार्ट अटैक्स. यू नो स्मोकर्स में तो ये चीजें बहुत ज्यादा होती हैं. You know, you may remember one of the celebrities who exercised for 2 hours and suddenly collapsed and died. And everybody said, "Wo to itna, you know, exercise karta tha. Wo to 2 saal se kya uski muscles hi kya tha?" And he was only 42, etc. And nobody knew that he actually smoked 15 cigarettes a day.
1: Yeah.
0: And smokers, me to I get this regularly. Absolutely perfect life. 45-year-old kehta hai ki ji, main to sab kuch theek karta hu. Khana dekhiye mera Mediterranean diet. Main to isko chhod diya, wo chhod diya. Looking absolutely fit. Main 15 kilometer jog karta hu. Main kehta hu, I'm scared about you, because hey, what's wrong with you? Acha smoke karte ho? Haan, smoke to karta hu. I said, I'm scared about you. Ki tum exercise kar rahe ho 15 kilometer. Yun hoga. Ek din suddenly clot aayega and you'll collapse and die. Why are you smoking? This is the sadness of it, because smokers have that sudden cardiac death. Wo jo hum dekh rahe hain na, kahin dance karte hue collapse kar gaye, they could have actually been smokers, because smoking itself precipitates clotting in the even normal arteries. 25-25 saal ke ladke heavy smoking ke baad maine dekhe heart attack hote hue jinki arteries full of clot hoti hai, blockage to hoti bhi nahi hai. And then we actually on the angioplasty table are extracting those clots, trying to actually prevent the heart damage. Or wo heart damage, I've got so many patients, at least I must have 1,000 young people between the age of 20 to 25, or even more, jinke heart attacks hue sirf smoking ki wajah se, jinka heart itna damage ho gaya ki unka normal heart functioning, wo bole heart attacks badi dangerous hote hain, because they're happening on normal arteries. Suddenly artery band ho gayi.
1: Is vaping those also equivalent to smoking?
0: Yeah, vaping is bad. Vaping, all taking away is nicotine part of it, but paper part of it. It's just taking wo jo bad products of the paper is taking away, but it doesn't take away the other bad effects on the arteries of the heart. So vaping is just a consolation of trying to make it more socially acceptable, but still continuing to harm us and harm you. Aur agar ye karte rahe to heart attack aayega hi. And that heart attack, by the way, every heart attack is shortening a life. So sometimes feel bad for that 20-25-year-old jisko heart attack hua, jiski wo jo 80-90 saal ki life honi thi, maybe 100 saal ki, gets cut down to 50 years, 60 years only.
1: Yeah.
0: It's sad.
1: Yeah, but every time people say this about smoking, my mind triggers into this other problem, which is that if I stay in Delhi, I am a smoker, sir.
0: Oh, to hai hi.
1: If I'm, you know, breathing in this polluted air, so we are all at risk.
0: Main to sabko lagta dara raha hu.
1: No, it's good to know. I really hope. I know what you're saying, but I really hope the purpose of this conversation is that we are able to, you know,
0: put a perspective.
1: No, get the right knowledge. Us to push our government also to say that, listen, my health, just by breathing, I'm taking away like 8-10 years of my life here, right?
0: Pata hai smokers ke liye kya kehta hu?
1: Kya?
0: Aap to smoke ne chhod di. Now don't even mix with smoke the friends who smoke. Kyunki aap passive smoking bhi karte rahoge na, 30% increase in risk of heart attack aapko ho jata hai. Aapka do smoke kar raha hai. Kya yaar? Ab chhodo smoking, give it up. Nicotine is one of the worst things that we actually seen in life. And let's not even passively smoke. But you're right about this pollution. You keh diya, wo bhi to ek cigarette roz ki pee rahe hai hum log.
1: Ek nahi sir, matlab. In worst conditions, it's 20 to 23 cigarettes a day.
0: So pollution, of course, is something we need to take very seriously.
1: Jo aapne ek LPA test ke baare mein bola, I think it's very important to clarify. It doesn't cost too much and you have to get it once in a lifetime, right? To just understand. Would you suggest that young people, when you say should know more about themselves, get these tests done?
0: Absolutely. Dekho, prevention of heart disease is no rocket science. And I would say, any government initiatives are needed. In fact, it's the cheapest thing to do. And I'll explain that. In my own life, it's the cheapest thing to do in everybody's life. But let's consider this. Ki test hi kabhi hone chahiye, which it also includes the LPA. So we say once in a lifetime is correct. But clearly, Hindustan mein har ek ke cholesterol, which is lipid profile, to 10 saal ki umar mein ho jane chahiye. Because heart disease to start hoti hai very early. Deposits to start hoti hai very early.
1: 10 years.
0: It has been actually seen ki jinko cholesterol ki tendency hai, jinke high cholesterol chal rahe hai, jinki family mein heart disease chal rahi hai, aur jinki ek history hai family mein ki father, mother at an early age in life, less than 55, 60, ya to heart disease hui hai, ya deaths hui hai, ya bypass surgeries ho gayi hai, ya siblings mein, ya unke siblings mein.
1: Which is practically 90% of North India.
0: Exactly. To ye to karna hi hai. Aur unke sab ke liye karna hai. It's now a standardized care. The second aspect is ki agar sab kuch theek nikla, tabhi to wo familial hypercholesterolemia ye wo pick up ho jata hai jo early in life, jise tabhi se treatment shuru ho jaye to future mein hum bach sakte hain.
1: Yeah.
0: But agar wo sab theek nikla, to then by the age of 20, again becomes a must. And then hume pata hi hai ki heart disease so badi early shuru hoti hai, to agar nikla theek, to 5-5 saal pe aap test karate rahiye. Aur 30-35 saal ke baad to har saal ek par cholesterol ke test karaiye. Now, sirf cholesterol ki baat nahi hai. And we know ki ye humne LDL karna, humne HDL karna hai, triglycerides karne hai, LPA karna hai. But LPA to ek baar zindagi mein kara liya, because that test does not change. बात रही रिस्क फैक्टर्स की पता करने की, और कोलेस्ट्रॉल तो एक ही रिस्क फैक्टर है, तो साथ साथ हमें शुगर का भी टेस्ट करा लेना चाहिए और साथ में भी एक बार बीपी चेक करा लें. अगर ये तीन रिस्क फैक्टर्स हमें पता हो तो हमने तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, क्योंकि हार्ट डिजीज प्रिवेंट करना तो हमारे हाथों में है. हम कहते हैं कि ये चाहिए वो चाहिए, यू नो, वी वांट ह्यूज नंबर ऑफ रूल्स रेगुलेशंस वगैरह वगैरह. पर अगर ये तीन रिस्क फैक्टर्स हम रेगुलरली जानते रहे तो हार्ट डिजीज हम खुद प्रिवेंट कर सकेंगे, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो अपना ख्याल रखना तो हमारे हाथों में है. द अदर थिंग, ये जो ये मैंने कहा कि बीपी चेक करने की बात, तो बीपी चेक तो हमें पता ही है कि हर ही कंट्री जब बीपी डायग्नोज भी होता है तो 50% लोग को तो अनकंट्रोल बीपी चल रहा है, धीरे धीरे किडनी डैमेज होती रहती है. कहते हैं एक गोली खा रहे, इससे ज़्यादा ना बढ़ाएं. कोई कोई डॉक्टर कहता है कि जी आपका बीपी अनकंट्रोल है. नहीं, घर में तो बड़ा ठीक चलता रहता है, जब भी हम मेजर करते हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है. हमें तो पता चल जाता है कि सर हेडेक होता है तो बीपी हाई है. तो ये सब कितनी मिथ्स हैं जो चल रही हैं, और किसी लोगों को पता भी नहीं है ज़्यादातर लोगों की बीपी के घर पे चेक भी कैसे करते हैं. वो मशीन ने दिखा दिया, उसी में खुश रहे.
1: हाउ डू आई नो दैट इफ आई हैव अनकंट्रोल्ड बीपी और घर की मशीन में ठीक दिख रहा है?
0: घर की मशीन में इसलिए कि हम ठीक से बीपी मेजर नहीं करते. एंड आई थिंक यू आस्क अ वेरी राइट क्वेश्चन, एंड लेट मी जस्ट क्लोज दिस. घर में चेक कैसे करते हैं? ठीक है, ज्यादातर लोग, आपने सुना ही होगा कि घर में मशीन रखी हुई है और कहते हैं जी हम रेगुलरली चेक कर रहे हैं, बड़ा ठीक आता है घर में. आपके यहाँ आते हैं तो फिर हाई हो जाता है. यस, दैट्स अ फैक्ट, नॉट अ मिथ. बट कितना हाई होता है? अगर मेरे को 180 मिल रहा है, जो कि रियली वेरी हाई बीपी है, तो आपका घर में 110 कैसे हो सकता है? 10-20 मिलीमीटर का तो वेरिएशन होगा ही. सो रियली वो हाउ द वे इट्स चेक्ड इज, टेबल पे बैठिए, आराम से टेबल पे बैठिए, जैसे मैं आपके साथ बैठा हूँ. बट सोनल के साथ बात नहीं करनी है उस टाइम पे. इनफैक्ट उससे पहले ना, और ये कॉफी भी नहीं पीनी होती इसके साथ. उससे पहले कोई हैवी खाना भी नहीं खाना है. चाय कॉफी नहीं पीनी है. इट शुड बी इन अ रिलैक्स सिचुएशन जिसमें आप किसी से बात ना कर रहे हो. ये नहीं कि घर में झगड़ा हुआ है उसके बाद कहा कि वीपी अब चेक कर लीजिए. सो अब आप उसको रखिए हाथ पे, बी कंफर्टेबल इन द चेयर कंफर्टेबली. बीपी इंस्ट्रूमेंट भी उसी लेवल पे होना चाहिए जिस तरह आपका हाथ है, और हाथ आपके हार्ट के लेवल पे होना चाहिए, जो कि ये है. आपका निप्पल, आपका हाथ है.
1: सो दिस लेवल इज फाइन.
0: उसके बाद आपने कफ जो बांधना होता है, वो ये आपकी जो एल्बो है उससे अप्रोक्सीमेटली 1 इंच या 2 सेंटीमीटर ऊपर आपका कफ है. आजकल हर कफ पे एरो बनी होती है कि आर्टरी कहाँ पे है. आर्टरी होती है, अगर ये ले क्रीज, तो उसका 2/3 और 1/3 अगर ज्वाइन कर ले वहाँ पे आर्टरी होती है. वहाँ पे एरो लगा दें, फिर आप अपना बटन दबाएं और आपका ऑटोमेटेड बीपी चेक हो रहा है. जब ऑटोमेटेड बीपी चेक हो रहा है तो आप रिलैक्स रहिए, आपकी एक ब्लड प्रेशर रीडिंग आएगी. आप उसके बाद 3 मिनट बाद से 5 मिनट बाद दूसरी रीडिंग लीजिए और एक थर्ड रीडिंग लीजिए और उसका एवरेज कर लीजिए. और आपने, अगर आपने रियली समझना है कि आपका बीपी है कि नहीं है, अगर अच्छी रीडिंग आई तो अच्छा है, आपने कभी कभी बीच में चेक कर लिया. अदरवाइज अगर आपने रियली करना है और अगर देखना है कि आपका कंट्रोल ठीक है कि नहीं, तो दिन में 2 बार, रात के खाने से पहले और सवेरे के खाने से पहले, सवेरे के ब्रेकफास्ट से पहले.

0: નહીં તો મેં તો અનુભવ કર્યો છે કે આવી પરિસ્થિતિમાં કોઈ વાત જ અને ફરિયાદનું નામો નિશાન ને ભૂપેન્દ્રભાઈ અને ગીતાબેન જોડે ગઈકાલે મુંબઈ એરપોર્ટ પર વાત કરી મેં, તો પણ ફરિયાદ એક નામો નિશાન નહીં. બસ એમની એક જ વાત હતી ને ભગવાન સારું જ કરશે. ચાલો જય શ્રી કૃષ્ણ, અને ખૂબ જલ્દી સાજા થાવ, પછી આપણે મળીએ છીએ. ગોડ બ્લેસ યુ.
1: And India Today also spoke with the American conservative Laura Loomer and Captain Smith Machar's uncle on the Fly Dubai hijack incident. Listen in.
2: Well, this Indian pilot, his name is Pilot Smith, he's a hero. And what's incredible about this story is it just goes to show you the importance of the Israel-India-U.S. alliance. And you really get to see that in the way that this pilot has been showered with so much praise, not just from President Trump and the American people, but also from Prime Minister Bibi Netanyahu and the Israeli people. I see that the President of Israel has now pledged to honor, right? They want to honor this Indian pilot. And it just also goes to show you, I mean, we also have to address the elephant in the room. We have to talk about the fact that each of these pilots on the plane did exactly what their religion taught them to do. The Hindu rushed to save the lives of the passengers on board, most of whom were Israeli Jews, right? Even while he was on the floor in the cockpit, bleeding, almost dying, according to eyewitnesses who had to rush the cockpit. And then, of course, you have this Omani Muslim jihadi pilot, co-pilot, whatever they want to call him. But once again, it's a big juxtaposition between, you know, the violent ideology of Islam and the peaceful ideology of Hinduism. And it just shows the pro-life mentality of Israelis and Hindu Indians.
3: You know, President Trump called him a hero. You know,
2: yes,
3: a brave hero. We talked about, and you talked about, that he'd be given some kind of an award by the Israeli prime minister. Would you ask President Trump to do the same for him?
2: I think that President Trump should do the same. Yeah, absolutely. It'd be really great at the G20 summit in Miami, which is coming up soon, if these heroes who were involved in restraining this jihadi pilot could all be invited to the G20 summit, including the Israeli plumber and the Israeli dentist and the Indian pilot.
4: स्मिथ ने पूरे दुनिया को, पूरे देश का नाम रोशन किया पूरी दुनिया के सामने. सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी आपके और आपके परिवार की स्मिथ से बात हुई है इस घटना के बाद जो दो दिन निकल गए.
5: मैं तो अभी बॉम्बे में हूँ, लेकिन स्मिथ के पिताजी मेरे छोटे भाई वो दुबई में गए, उनसे मिले हैं और हमारे प्रधानमंत्री ने वो व्यवस्था कर दी थी और वो हॉस्पिटल में जाके मिले. वो भी स्वस्थ है स्मिथ, और इसकी हमें खुशी है बहुत.
4: तो ये जी बिल्कुल, ये जानकर बहुत खुशी हो रही है सब पूरे सारी इंडिया टुडे के दर्शकों को, देशवासियों को, क्योंकि आप कैप्टन स्मिथ इस समय स्वस्थ है. आज हमने, पूरे देश ने देखा है जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बात किया स्मिथ के साथ, उनको भरोसा दिलाया कि पूरा देश उनके साथ है, उनकी बहादुरी की तारीफ भी की. आपको कैसा लगा ये इंटरेक्शन प्रधानमंत्री और स्मिथ के बारे में, के बीच में देखकर आपने कैसा महसूस किया?
5: अपने घर के बुजुर्ग कितने प्यार से जैसे बात करते हैं, ऐसा फील हो रहा था कि कोई अपने अपना ही है, कोई जो अपने पिताजी के माफी जैसे बात करते हैं ना अपने बच्चों से, अब ऐसा फील हुआ. ऐसे सूदिंग, इतने अच्छे से बात किए उन्होंने और बड़ा गर्व गर्व बहुत फक्र महसूस हो रहा है अपने प्रधानमंत्री जी के लिए. उन्होंने जिस तरह से बात की वो एकदम से हमको सराहना दी है, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा.
4: ईशा जी ये बताइए, आप स्मिथ के बड़े पापा है, आपने उन्हें शायद बचपन से देखा होगा, आप आपकी क्या यादें हैं स्मिथ के, जैसे आप वो कैसे थे जब वो युवक थे, जैसे जब उन्होंने पायलट ट्रेनिंग की थी, क्या आपको पहले से पता था कि उनमें एक ऐसी बहादुरी है, एक देश प्रेम है जो आज पूरी दुनिया ने देख लिया है?
5: एक तो आपको बताऊं कि मैं और मेरा भाई हम लोग 50 साल साथ ज्वाइंट रहे हैं. पिछले 10 साल से जब इसे बच्चे बड़े हुए तो भाई ने भी अलग से फ्लैट लिया और मैंने भी अलग से फ्लैट लिया. बाकी हम दोनों दोनों मेरा बच्चा, मेरा बेटा और भाई, भाई का बेटा स्मिथ, मेरा बेटा भी पायलट है

0: मतलब कि आपको लगता है नेतृत्व पर प्रेशर बनाया गया और प्रेशर के चलते जिस तरह से सचिन पायलट नए इंचार्ज आए और उसके बाद ये बदलाव हुआ है, तो 10 जनपद पर भी प्रेशर था, चाहे वो एक अलग प्रेशर ग्रुप का पंजाब में, जिसकी वजह से आपको बदला गया?
1: नहीं, इसकी जानकारी तो नहीं है मौसमी जी कि प्रेशर कोई था या नहीं था, लेकिन हाँ सचिन पायलट जी 5 तारीख को हमारे इंचार्ज बने थे और आज 2 तारीख हो गई है, तकरीबन 1 महीना 2 घंटे के लिए वो प्रदेश आए थे एजिटेशन में और उसके बाद निरंतर लोगों को यहाँ मिल रहे थे और उनको लगा होगा शायद कि बदलाव की जरूरत है, तो मेरे को लगता उनका कोई फीडबैक रहा होगा, इस मेरे को लगता है, इसके बारे में कोई जानकारी पुष्टि तो मेरे पास नहीं है।

0: मुझे अपना नाम बताइए, कौन है आप?
1: It's 10:30 p.m. I was trying to approach a metro station at Lajpat Nagar, trying to take public transport home, which most women like me do at this hour. And sadly, so the story on the roads of Delhi doesn't seem to change. The Delhi Police Commissioner had promised that every arterial road will have a PCR. Well, there was a PCR here, standing right there, if my camera person can actually show you. And while I was walking up to the metro station, I was teased, I was harassed by three young men. The minute they saw headlines today, cameras, they scooted.
2: पांच लड़के हमसे मिसबिहेव किया था, बिल्कुल हमारे से मिसबिहेव किया था उधर. आपका PCR वैन बिल्कुल पीछे था. आप सर तब से दो घंटे हो गए हैं उस इंसिडेंट को. हाँ जी, उस इंसिडेंट को हम 10:30 पे थे, अब 12 बज रहे हैं. पेट्रोलिंग पर अगर मोटरसाइकिल निकल रही थी, हम वहाँ पर ही खड़े हुए थे सर, उधर. ये बिल्कुल हम स्टेयर्स मेट्रो स्टेशन में हम जा रहे थे, सामने सामने उधर. तो और आपका सर अभी तक मूव नहीं हुआ है यहाँ से. PCR हमने वेट किया कि आप देखेंगे, क्योंकि वो आए हमसे, हमारे से उन्होंने छेड़खानी की.
3: मिल जाती है, उस पे जाती है गाड़ी, उसके बाद स्ट्रेट खड़ी करते हैं.
2: सर आप लोग देखते नहीं है आपके बिल्कुल सामने क्या हो रहा है?
3: मोटरसाइकिलें भी हैं
2: सर यहाँ पर. आप अभी तक एक मोटरसाइकिल नहीं पास हुई है, हम तब से यहीं पर ही हैं.
3: मोटरसाइकिल भी सब कुछ.
0: आपने वो दिल्ली पुलिस ने वादा किया था आपसे हमसे कि सड़कों पर पेट्रोलिंग बढ़ेगी, बीच स्टाफ ज्यादा मौजूद रहेंगे सड़कों पर, बसेस पर जितने भी नियम है उनका पालन किया जाएगा, ऑटो रिक्शा को लेकर जरा सख्त रवैया अपनाया जाएगा. लेकिन क्या वो सब कुछ हो रहा है, यही जानने समझने की कोशिश करेंगे. तो बाइक में सवार होकर ये देखिए, लगभग 10 बजे के आसपास

0: मैं सर से भी बोल रहा था, आप मेरे सबसे बड़े आइडल से पीछे, और आप मेरे को ऐसे कॉल करके मेरी ऑफर अजाई कर रहे हैं, मुझे बहुत बहुत बहुत गर्व फील हो रहा है। मैं उस मोमेंट में सर, मैं अपनी लाइफ के लिए लड़ रहा था, बट एक ऐसा मोमेंट था जब मेरे को रियलाइज हुआ कि अगर मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं गिर चुका था, मेरे को इतने गांव लग चुके थे कि मैं गिर चुका था नीचे, एंड उस टाइम पे मैं बोला अगर मैं नहीं उठूंगा तो मैं एग्जाम में 17 साल से ज्यादा दौड़ा था, मैं पिछले 11 साल से कैप्टन हूँ, और मुझे पता चलता है आंख बंद करके भी कि चार्ज में क्या हो रहा है। जब मैं नीचे गिरा हुआ था तब मुझे एहसास हो रहा था कि एयरक्राफ्ट नीचे जा रहा है, और मुझे बिल्कुल पता था कि ये एक लास्ट पुश अगर स्मिथ कर दे दरवाजा बस वही है, और तभी भी मैं मार खा ही रहा था, बस वो खोल दिया सर, बाकी सब आगे, और बाकी सब की भी उतनी उतनी उसमें उसमें रोल था, बट जान के मैं सर को बोल रहा था कि मैं अपनी जान के हिसाब से कर रहा था, बट एट द सेम टाइम मुझे इतना भी पता था कि मैं उन सबको नहीं मत दे सकता। बस उसके बाद मेरे को लोगों ने यहाँ पे भी सावधानी में भी यहाँ पे तो पढ़ के इससे अच्छी केयर और इससे अच्छा मेडिकल अटेंशन नहीं मिल सकता था, एंड मैं सर आई एम जस्ट मैं एक सिर्फ पॉजिटिविटी में मैं जब भी मेरे को दर्द होता है मुझे एक ही चीज आती है, मैं सिर्फ हनुमान चालीसा बोलता हूँ। उस टाइम पे भी मैं सिर्फ हनुमान चालीसा ही बोल रहा था, अब मुझे पता है कि वो भगवान ही मेरे को बचाए।
1: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: देखो, मैं कांग्रेस के बारे में तो एक ही कह सकता हूँ, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अब एक का इस्तीफा ले लिया, अब दूसरे के पीछे पड़ जाएंगे जी। इनका तो काटो क्लेश है, ये क्लेश कभी नहीं मुकेगा, कभी खत्म हो ही नहीं सकता। इनका क्लेश है कुर्सी का, कुर्सी का क्लेश कौन सा है? चीफ मिनिस्टर की कुर्सी का। वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के पीछे सब दौड़ रहे हैं, ये प्रधानगी का कोई नहीं है, इनको पंजाब की कोई नहीं है, कांग्रेस का हमेशा ही, आज नहीं शुरू में रहा है, ये हमेशा काटो क्लेश इनका कुर्सी का रहा है। आपको लगता है कि एक इस्तीफे से ये खत्म हो जाएगा? ये और बढ़ेगा।
1: And India Today exclusively spoke with outgoing Punjab Congress Chief Amrinder Singh Raja Varing after his meeting with Rahul Gandhi. Listen in.
2: क्या चन्नी साहब को कुछ आप संदेश देना चाहेंगे? पूर्व सीएम हैं, आपसे सीनियर हैं, जिस तरीके की पूरी हरकत वो सभी ने देखी, सियासत रही, क्या आपको लगता है वो चन्नी साहब को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए?
3: देखो, सीएम साहब, चन्नी साहब सीनियर तो नहीं है।
2: हाँ।
3: अगर कोई सीएम होने से मेरे को लगता है सीनियर नहीं होता है, क्योंकि जितनी बार वो चुनाव जीते उतनी बार हम चुनाव जीते हैं, और वो हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर हैं, और मेरे को उनसे कोई आपत्ति नहीं है। और वो जब हम पार्टी जिसको बना देती है हम उसको मान लेते हैं। सचिन पायलट जी 5 तारीख को हमारे इंचार्ज बने थे, और आज 2 तारीख हो गई है, तकरीबन 1 महीना 2 घंटे के लिए वो प्रदेश आए थे एजिटेशन में, और उसके बाद निरंतर लोगों को यहां मिल रहे थे, और उनको लगा होगा शायद कि बदलाव की जरूरत है, तो मेरे को लगता उनका कोई फीडबैक रहा होगा।
1: सो लेट्स नाउ अंडरस्टैंड द कांग्रेस पार्टीज पंजाब गेम प्लान। सो It is focusing on the Jat Sikh consolidation of votes. So Pargat Singh has now been appointed as the Punjab Congress chief to strengthen the party's outreach among the Jat Sikh voters. One united front. So it is bringing competing factions, the rival factions within the party together under Sachin Pilot, who's the in charge of Punjab, under his strategic coordination. The attack is on Aam Aadmi Party. So the Congress party is also highlighting alleged policy gaps and law and order concerns, particularly in the rural areas of Punjab. There's farmer outreach also, so they are reconnecting with rural voters who have shifted away by emphasizing agriculture-related relief measures. Well-oiled poll machinery, so they are also streamlining district and block-level teams to strengthen the grassroots coordination. So this is the new strategy and game plan of the Congress party in poll-bound Punjab. With that, it's a wrap on this bulletin. Thank you for watching India Today. More news and updates will continue on the other side.
4: You are watching India Today.

0: स्मित, अगर मेरे सामने आप भावुक नहीं होंगे तो कहां होंगे?
1: चलिए, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी आपसे बात होगी, कभी नहीं सोचा।
0: आपने इतना बड़ा काम किया है भाई कि हर देशवासी, आज दुनिया के लोग आपको देखने, आपसे बात करने के लिए बहुत ही आतुर है। और ये बात आपने जो बताई है हनुमान चालीसा की, इसके लिए तो मैं गीता बहन को प्रणाम करूंगा कि आपको ऐसे संस्कार दिए। भूपेंद्र भाई को प्रणाम करूंगा कोना में। और मैं आपको बताऊं, उसमें कम मेरी जब सोलन बहन से बात हुई तो मैं सरप्राइज था, इतनी स्वस्थता से वो बात कर रही थी, उतनी हिम्मत से बात कर रही थी। सचमुच मैंने कल्पना नहीं की थी कि सोनल बहन ऐसी परिस्थिति में इतनी स्वस्थता से बात कर सकती है। तो मैं समझता हूं कि आपने एक परिवार के नाते आपने सचमुच में पूरे देश का नाम रोशन किया है।
1: सर, मैं रोज सुबह जब पूजा करता हूँ, मेरा 2 साल का बेटा मेरी गोद में बैठ के मेरे साथ हनुमान चालीसा मैं उसको सुनाता हूँ कि जो मुझे बोला गया है, क्योंकि आज हम लोग देश से दूर है, बट हमारी संस्कृति से दूर नहीं होनी चाहिए।
0: सही बात है।
1: और अभी तो यहाँ पे तो वो भी नहीं लगता कि हम देश से दूर हैं। ये यहाँ पे लोग बहुत बहुत बहुत प्यार से और बहुत ध्यान से हमें रखते हैं।

0: स्मित, अगर मेरे सामने आप भावुक नहीं होंगे तो कहां होंगे? आपने इतना बड़ा काम किया है भाई कि हर देशवासी, आज दुनिया के लोग भी आपको देखने, आपसे बात करने के लिए बहुत ही आतुर है। और ये बात आपने जो बताई है हनुमान चालीसा की, इसके लिए तो मैं गीता बहन को प्रणाम करूंगा कि आपको ऐसे संस्कार दिए। भूपेंद्र भाई को प्रणाम करूंगा कोना में। और मैं आपको बताऊं, उसमें कम मेरी जब सोलन बहन से बात हुई तो मैं सरप्राइज था, इतनी स्वस्थता से वो बात कर रही थी, इतनी हिम्मत से बात कर रही थी। सचमुच मैंने कल्पना नहीं की थी कि सोनल बहन ऐसी परिस्थिति में इतनी स्वस्थता से बात कर सकती है। तो मैं समझता हूं कि आपने एक परिवार के नाते आपने सचमुच में पूरे देश का नाम रोशन किया है।
1: सर, मैं रोज सुबह जब पूजा करता हूँ, मेरा 2 साल का बेटा मेरे गोद में बैठ के मेरे साथ हनुमान चालीसा मैं उसको सुनाता हूँ कि जो मुझे बोला गया है। क्योंकि आज हम लोग देश से दूर है, बट हमारी संस्कृति से दूर नहीं होनी चाहिए।
0: सही बात।
1: और अभी तो यहाँ पे तो वो भी नहीं लगता कि हम देश से दूर है। ये यहाँ पे लोग बहुत बहुत बहुत प्यार से और बहुत ध्यान से हमें रखते हैं।
2: Watching India Today.
3: Welcome back, viewers, and a very good evening to you. You're watching India Today with me, Sriya Kundu. We are tracking all of the top stories for you in this hour's bulletin. And let's begin with the headlines at the top. Dubai's Crown Prince meets hero Captain Smith at the hospital, expresses full appreciation and praise for the pilot. Ministry of External Affairs gives update on Captain Smith's health condition, says he is recovering well. Probe intensifies in Fly Dubai mid-air hijack bid. Fly Dubai co-pilot has been identified as Hammam al-Hammami. Israel to join UAE-led probe says whoever sent the attacker will pay a very heavy price. UAE calls it an act of terror. Fly Dubai says it will support probe officials. Storm over Stalin's body shaming remark on the TVK candidate Satya Bama. Chief Minister Vijay slams now DMK chief, calls the comments indecent and uncivilized. TVK files complaint with the Election Commission, seeks FIR. Satya Bama says she is distressed by the insulting remarks. Trouble now mounts for the CJP in Mumbai. Human rights body NHRC issues notice to Maharashtra police over alleged use of minors in the protest as shields. Notice also refers to the Cockroach Janata Party's Ajinkya Saurav Das, Abhijit Deepke's material on the protest plan. And from the world of sports, India ends Asian Games 2026 with an impressive 85 medals, which includes 21 gold medals. Men's hockey team successfully defend their gold medal with a glorious victory, 5-1 win over Malaysia, while Indian men's cricket team clinches back-to-back gold medals after defeating Pakistan in the final.
4: By 19 runs at the end, and it was truly a wonderful performance by the men in blue.

0: सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करूंगी कांग्रेस के हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का, आदरणीय सोनिया जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, जिन्होंने ये विश्वास मुझ में जताया है और मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ, मेरी चौथी पीढ़ी है ये कांग्रेस में, इस जिम्मेदारी को मैं पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ निभाऊंगी। 2027 में इंडिया गठबंधन पूरी ताकत और मजबूती के साथ लड़ेगा। ये निर्णय शीर्ष नेतृत्व करेगा कि लड़ाई कहाँ पर, कैसे और कितनी होनी है। मैं इतना जरूर विश्वास दिलाऊंगी कि मैंने पिछले 2 वर्षों में कांग्रेस के संगठन को मजबूत होते देखा है। जिस तरह से अभी संगठन सृजन का कार्यक्रम हुआ, वो भी पूरी पारदर्शिता के साथ हुआ, और मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इस प्रदेश में जिस भी कोने में होगा, उसको हम निकाल करके लाएंगे और कांग्रेस को मजबूत करेंगे।
1: देखिए, जो राहुल जी का, प्रियंका जी का निर्णय, जो पार्टी का निर्णय, खड़गे साहब का निर्णय, उसके ऊपर मेरा कोई बोलने का मतलब ही नहीं। जहां वो मुझे लगाए मैं वहां काम करूंगा।

0: welcome. You are watching In the Club, and I am Susan. Ajay Devgan is returning as Vijay Salgaonkar for the third installment of the Drishyam franchise. Titled Drishyam The Conclusion, the film promises another chapter of twists and secrets. But this time, the Hindi film is taking a completely different route from Mohanlal's Malayalam version. With familiar faces returning and new players joining the franchise, what lies ahead for Vijay? Take a look at this report.
1: आपने कहा उनके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। किस सबूत के बारे में बात कर रहे हैं लोग?
2: वैसे भी जब आप लोगों ने कुछ गलत किया ही नहीं है तो घबराने की कोई बात ही नहीं।
3: हमें अपने बेटे के लिए जस्टिस चाहिए।
4: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए।
5: अनपढ़ है, बेवकूफ नहीं, और इसे हल्के में लेने की गलती में नहीं।

0: सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करूंगी कांग्रेस के हमारे अखिल
1: मैं
0: भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का, आदरणीय सोनिया जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, जिन्होंने ये विश्वास मुझ में जताया है। और मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ, मेरी चौथी पीढ़ी है ये कांग्रेस में, इस जिम्मेदारी को मैं पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ निभाऊंगी। 2027 में इंडिया गठबंधन पूरी ताकत और मजबूती के साथ लड़ेगा। ये निर्णय शीर्ष नेतृत्व करेगा कि लड़ाई कहाँ पर, कैसे और कितनी होनी है। मैं इतना जरूर विश्वास दिलाऊंगी कि मैंने पिछले 2 वर्षों में कांग्रेस के संगठन को मजबूत होते देखा है। जिस तरह से अभी संगठन सृजन का कार्यक्रम हुआ, वो भी पूरी पारदर्शिता के साथ हुआ। और मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इस प्रदेश में जिस भी कोने में होगा, उसको हम निकाल करके लाएंगे और कांग्रेस को मजबूत करेंगे।
2: देखिए, जो राहुल जी का, प्रियंका जी का निर्णय, जो पार्टी का निर्णय, खड़गे साहब का निर्णय, उसके ऊपर मेरा कोई बोलने का मतलब ही नहीं। जहां वो मुझे लगाए मैं वहां काम करूंगा।

0: सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करूंगी कांग्रेस के हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का, आदरणीय सोनिया जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, जिन्होंने ये विश्वास मुझ में जताया है। और मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ, मेरी चौथी पीढ़ी है ये कांग्रेस में, इस जिम्मेदारी को मैं पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ निभाऊंगी। 2027 में इंडिया गठबंधन पूरी ताकत और मजबूती के साथ लड़ेगा। ये निर्णय शीर्ष नेतृत्व करेगा कि लड़ाई कहाँ पर, कैसे और कितनी होनी है। मैं इतना जरूर विश्वास दिलाऊंगी कि मैंने पिछले 2 वर्षों में कांग्रेस के संगठन को मजबूत होते देखा है। जिस तरह से अभी संगठन सृजन का कार्यक्रम हुआ, वो भी पूरी पारदर्शिता के साथ हुआ। और मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इस प्रदेश में जिस भी कोने में होगा, उसको हम निकाल करके लाएंगे और कांग्रेस को मजबूत करेंगे।
1: देखिए, जो राहुल जी का, प्रियंका जी का निर्णय, जो पार्टी का निर्णय, खड़गे साहब का निर्णय, उसके ऊपर मेरा कोई बोलने का मतलब ही नहीं। जहां वो मुझे लगाए मैं वहां काम करूंगा।